0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जिस भी बच्चे को देखे, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उनको ये लक्षण दिखाई से परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप की कौन थे, कौन है वो बच्चों दिखाई दे अनुभव करें।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साधन नहीं है और हमको तो वैराग्य है, तो कौन मानेगा? साधन हो और पहले साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर? साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए। अच्छा है साधन यूज करो, बड़े दिल से करते हुए अनोखी प्रभाव में नहीं है। त्यारे साधन बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्जने कर अभी आवश्यकता है विश्व में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अब सेवा में नवीनता क्या लाएं? जो अभी तक सेवाएं चली हैं उसके अलावा अब नयापन क्या लाएं? संदेश तो बहुत मिल गया सबको, बहुत जा भी रहा है और मिल भी गया।
4: अभी नजदीक आना, कम से कम स्टूडेंट नहीं बने लेकिन आने वाले मिलने वाले सुनने वाले तो बने, कम से कम बोलने तो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

अपने पन का एहसास, अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा साथ।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इससे अभी ऐसी अनुभूति शुरू करें। तपसा के अधिकांश।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा आज भी सभी बच्चों

sa mesi. Sra.

raro.

चल रही है, चल

0: मानी पड़ेगी। आज ये कह रही है बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे टॉयलेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है। लेकिन स्वयं हाथ में है या बेहद, हाथ की बातें के पीछे आप नहीं दौड़ो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चों का बाप दादा मानक के संकल्प रीड करते हैं, कई बच्चे समय अनुसार सरकमस्टेंस अनुसार
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

是那么

सबसे महान

Yoga.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा बच्चों की बातें बहुत सुनी, कहती है हंसाती है बाप दादा को, अच्छा है। कहती है ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़ी हो जाती है, लेकिन मन का

संस्कारों में समय नहीं, शुद्ध में समय नहीं गवा। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार सोचना है, बस नहीं करना है, नहीं बोलना है। स्टॉप, तो स्टॉप हो जाए।

Safari.

संकल्प सम।

जाओ जितना समय जाओ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा, ये रायल रूफ के मैमे के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वो ही ठीक है, मैंने जो सोचा वो ही ठीक है, वो ही होना चाहिए। ये मैं बन धोखा दे देता, सोचो भले कहो भले, लेकिन निमित और निर्माण बाउस
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से अलचल में आते हैं, उसका कारण सिर्फ तीन बातें मुख्य है। वही तीन बातें बिना समस्या या परिस्थिति बन के आती। वो तीन बातें क्या है? अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। सोचना, बोलना और करना। अभी विक्रम कम होती है लेकिन कम। व्यर्थ ज्यादा होते
2: में देखा तो बोल और कदम में नहीं आता है, लेकिन सोचने में बहुत आता है। उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है, जो समय बनाने का है वो सोचने में बीत जाता है। इनकी गिफ्ट सभी से देने चाहते त्यार है त्या त्यार है। सभी ने ये दे दिया, वापस नहीं लेना। ये नहीं कहना मुख से निकल गया न क्या करे। संकल्प का बटन लगा दो मुख पर, तेरे संकल्प का बटन तो है ना। क्यों पाप दादा को बच्चों से प्यार रहना तो प्यार की निशानी है। प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा तो उस समय ये सोचते के बाप दादा साकार में जाके इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकार निराकार है। बिल्कुल सभी भी छूटिए, छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की कोशिश करो, छोड़ने की कोशिश। बाप को भी बच्चों पर फीत है, लेकिन पता नहीं क्या कोई किनारे कर लेते हो, जो बाप को भी पता नहीं पड़ता कैसे किनारा कर लिया। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो, ब्रह्मांड जीवन का अर्थ है झूलना, माया में नहीं। माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। अभी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूलों में झूलो, भी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं अनगिनत, झूले से उतरो नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: संस्कार है। सत्संग

hacerle. Jimmy, what?

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

बातें नहीं सोचो, ये कैसे होगा, ये क्या होगा।

0: chico esa. Yo que pachacho paninga. Usco salva prapti. Cafartan pite que aquí paranga. Piche neira.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कई बच्चे कहते हैं कि हम कई बार अनुभव करते हैं कि कभी कभी जब कोई शक्ति चाहती है ना, तो उस समय पर शक्ति नहीं आती। वैसी शक्ति है, लेकिन समय पर कभी शक्ति को इमर्ज करते हैं ना, तो भी नहीं आती। है मास्टर सर्वशक्तिमान, टाइटल क्या है आपका? मास्टर सर्वशक्ति। मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर सीट नहीं होते। अभी दफ्तर में भी जाओ तो जो अथॉरिटी करने वाले को होगी वो ऑर्डर करेगा तो मानते हैं ना। ऐसे दूसरा कोई कहे तो मानेंगे क्या? तो आपकी सीट है मास्टर सर्वशक्तिमान, उस सीट पर सीट नहीं होते। तो आह्वान करते भी शक्ति समय पर नहीं आती। इसके लिए बाप दादा ने बार बार कहा है, अपने मन को बिजी रखो, कभी किस शक्ति को सारे दिन में इमर्ज रखो, कभी किसी शक्ति को इमर्ज करके देखो कि उसकी ताकत क्या है। ऐसे अनुभव करते रहेंगे अपने सीट पर से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना सान नहीं होता। उसमें

si se va a quedar.

fartarse.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ भी हो, बाप साथ है, मोचने की क्या बात है, कंफ्यूज होने की क्या बात है, बाप का साथ का सहयोग लो। अकेले समझते हो ना तो मौज के बजाय मौज जाते हो, हम मौजना नहीं, ठीक है ना? अभी भी मौजेंगे नहीं मौजेंगे क्या? अभी नहीं मौज रहे है सिद्धी, अभी मौज में हो, इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन मौज नहीं जाए, ठीक है ना? कि मौज चली जाएंगी, मौज नहीं जानी चाहिए। सेवा का बल है तो उस बल को कार्य में लगाओ। सिर्फ सेवा नहीं करो लेकिन सेवा का बल जो बाप से मिलता है उसको काम में लगा। सिर्फ सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो थक जाते हो, मौज भी जाते हो, लेकिन बाप के साथ का अनुभव जहां बाप है वहां मौजी मौज, उस साथ को इमर्ज करो। सुनाया ना, याद करते हो लेकिन साथ को चूस नहीं करते, इसीलिए मौज जाते। संगम युग मौजों का युग है या मौजने का युग है? क्या है मौज का है? फिर मौज देखियो, अभी अपने जीवन के डिक्शनरी से मौजना शब्द निकाल लो। निकाल लिया पक्का कि थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, एकदम मिटा दो। परमात्मा के बच्चे और मौज में नहीं रहे तो और कौन रहेगा? और कोई है क्या? नहीं, तो सदा मौज ही मौज है। सभी अपने ड्यूटी पर खुश हो, कि थोड़ा किटकिट है ड्यूटी में? नहीं, कुछ भी हो ये पेपर पास करना है, बात नहीं है पेपर। पेपर पास करने में खुशी होती है ना, क्लास आगे बढ़ती है ना, तो बात हो गई, समस्या आ गई। ये नहीं सोचो पेपर आया पास हुआ मौज मना। जब बच्चे पेपर पास करके आते हैं कितने मौज में होते हैं, पूछते हैं क्या ये पेपर तो आएंगे? पेपर ही अनुभव में आगे बढ़ाते, इसलिए सताइए, अपना टाइटल याद करो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: स्वभाव संस्कारों को सेवा के समय देखो ही नहीं, देखती है ना इसने ये किया, इसने ये कहा, सफलता दूर हो जाती, देखो ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ जी, और बहुत अच्छा, ये तो शब्द हर कार्य में यूज कर लो। स्वभाव वैरायटी है और रहने भी है। स्वभाव को देखा तो सेवा कदम बाबा करा रहा है। बाबा को देखो, बाबा का काम है, इसकी ड्यूटी नहीं है बाबा की। तो बाप में तो स्वभाव नहीं है ना, तो स्वभाव देखने नहीं है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहती है कि आजकल सच्ची लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती है कि कहां कहां तो झूठ नहीं कहते उसको, लेकिन कहते हैं, समझती है कि यात्रा से चलना पड़ता है। तो यात्रा क्या है? ये तो करना ही पड़ता है। तो वो स्पष्ट बोलती है और ब्राह्मण रायल भाषा में कहती है, मेरा भाव नहीं था, न भावना थी न भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप
3: Yeah.
2: के लिए काफी नहीं करूं। यहां नाम नहीं है लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम।
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बच्चे क्या करते, कोई कोई सब नहीं, जो वरदान मिला उस

Lässig.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर कोई नैन अंदर में समझे, हाथ उठाने में शर्म आवे, तो भी
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इसी

ебана.

Yeah.

0: रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: स्लीप अप दादा। हर बच्चे को यही शिक्षा देने चाहती है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सदा कहते हैं कि फॉरेनर्स इस जन्म के फॉरेनर्स है, लेकिन अनेक जन्म के ब्राह्मण परिवार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा यही चाहते हैं। हर एक स्वयं चेक करे, अगर कोई भी So

सर्व शक्तियों का वरदान दिए, सर्व गुणों का खजाना दिए। खजाने को यूज करने से खजाना पड़ता है। खजाना है, सबके पास है, बाप दादा ने देखा है, हर एक के स्टॉक को भी देखता है। बुद्धि है स्टॉक रूम, तो बाप दादा ने सबका देखा है, स्टॉक में है।

0: teman penenang. कोई मुश्किल नहीं.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे यार

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

ही मैंने अपने जीवन से भ्रमण नहीं अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन से No.

sesat para dame ucete ucabab on kesat uce istetime Shook.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी पूछते हैं आगे क्या करना है, बाप दादा का संकल्प है कि अभी ज्यादा में ज्यादा बने बनाई स्टेज पर चांस लो और उनको सहयोगी बनाओ और आप सकाश दो। दूसरों का भाग्य बनाओ, भाग्य बनाने का चांस दो उनको। भाग्य बनाने के लिए सिर्फ स्वयं आश कौन सी दो, एक तो रहम दिल बहुत बनो, कि ब्याह के बाप के साथी बनो, शक्तिशाली से वायुमंडल ऐसा बनाओ जो स्वयं आफर करे, ऐसे आफर चारों ओर आवे, हर जोन में आफर आवे, ये सुतई प्रसिद्ध हो जाएगा। अभी उनों का भी सहयोगी सनई बनने का चांस दो, उनों को भी चांस दो क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि सनई सहयोगी हर जोन में यथाशक्ति है, लेकिन उनको सेवा के साथी बनाओ, उनको भी उमंग उत्साह के पंख दो, है चारों ओर, क्योंकि बाप दादा चक्कर तो लगाते हैं ना, तो अपने बच्चों को भी सहयोगी नजर में है, लेकिन चांस नहीं दिया है, प्रैक्टिकल चांस नहीं लिए, तो ये वर्ष तो वो भी आपको लेना देंगे कि आपको तो आपने बताया ही नहीं कैसा भी कर सकती है। इसलिए आप चांस देने वाले
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को किसी भी बच्चे की

0: 紹介よけ。いつも紹介よく見えび。もうつないまないんけ。とかまないんけ。パプタタコ。チャプティクテーナ。キパチポチュタケ。
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज शिवरात्रि पर हर एक

A piece.

कोई कोई बचोगा। पाप का सदा पक्का निर्विघ्न साथी बनकर इस बात के ऊपर अच्छा ध्यान है, क्योंकि अभी आप निमित्त बने हुए बच्चे निर्विघ्न अवस्था।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आपके चेहरे

made it.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जितना प्यार है ना उतना साथ में, प्यार भी चाहिए शक्ति भी चाहिए, अभी शक्ति को बढ़ाओ।

0: pipí, coipí. Bene. Apne ko sarv shakti nahi, shiv shakti samjho. Shiv shakti paap saath hai. पांडवों से पांडव पति सत तो अभी क्या करेंगे जो बाप दादा ने कहा है पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द लगाओ वायुमंडल बनाओ एक दो किस सहयोगी बन हर एक अपने अपने स्थान पर रहते हैं स्थान को शक्तिशाली बनाओ साथियों को शक्तिशाली बनाओ तो क्या करेंगे अभी नवीनता करेंगे ना जब मेरा बाबा कहते हैं तो मेरे जैसा बनना तो पड़ेगा ना हर एक अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो संकल्प अच्छे अच्छे करते हो अमृत वेले बाप दादा देखते हैं संकल्प अच्छे करते हो ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे लेकिन जब कर्म योगी बनते हो संबंध संपर्क में आते हो उसमें फर्क हो जाता कर्म योगी की स्थिति उसमें अटेंशन ज्यादा जाए
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो जहां है आनंद ही आनंद

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मनोबल को बढ़ाओ, मनोबल की सेवा बेहद की सेवा जो आप वाणी या समान संयोग से करते हो, मनोबल की बेहद की सेवा एक समय की वा थोड़े समय की, इस सेवा से बहुत बहुत ज्यादा। अगर आपने बेहद के वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर स्थित ऊंचा पाप के साथ परम धाम के स्थिति में स्थित हो, थोड़े समय में भी सेवा की तो आपको उसकी

真的什么的，你的脸不见
вам кисаться. А не, не. Потерпи. Ты в рубами. Yeah.

सिटी बचने वाली अभ्यास करूं।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Fuck.

0: जब आत्माओं को सने से सम्मान देते हो, वास्तव में किसी को भी
1: ईश्वरी परिवार का बच्चा है।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: चैलेंज

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे, धरती गगन हो मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो, आता है चित्र खींचने आता है।

रचना इस वृक्ष के जड़ में बैठ

Jefe Carpaccio.

See.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, ऐसे मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी, मदद बाप की। लेकिन हिम्मत नहीं यार, अपन ने भाग्य का सितारा सदा चमका दे रहना, क्योंकि इस जन्म का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ, पुरुषार्थ नहीं तीव्र पुरुषार्थ, अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाले। इसलिए हिम्मत कभी नहीं यार पाते आएंगी, लेकिन बात महावीर नहीं है, आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। आपके आगे बात क्या है, बात आती है और चली जाती है, जो चली जाने वाली है उसके पीछे अपना ही तकदीर नहीं गवाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना पाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से, और पाप के लिए है या परम आत्मा के लिए है। आत्माए नंबर वार आत्माए तो है, स्वयं बच्चों के याद के पाप रह ही नहीं सकता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेवा तो करी, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट है और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, वह सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वो भी संतुष्ट है, तो समझो जमा हुआ। स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो परसे

0: क्षमा की परसेंटेज कम कर दे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चला रहे अगर मत
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी समय पर मान सब अचानक होना है, पता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति का अचानक बातों का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है। अभी नई नई बातें, अचानक अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। क्या उन्हों को पता था कि कलम हो गई या नहीं? ऐसे कई एक्सीडेंट बिन स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गए हैं। इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है। ऐसे समय में

0: किया और स्वरूप बना, इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रही है। किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वभाव के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो, बनना ही पड़ेगा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

ദുഷ്ടം മണിയാക്കോ.

假如Chamaco

Ich

Santo Strong.

サッとし

じゃあ、サッとして。

そっとした。キーステティバラステティケオバルサダビデイバラステティ

Yeah.

Tiempo racham. Is

ரிவதல்தா.

0: செய்கிறேன்.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चेहरे

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी समय पर मान सबको बेहद के फैराग फिरती में समझती है कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने, जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये समय शिक्षक बनाना। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, बेहद की फैराग आद से अंत तक रहा।
2: बाबा का बना

0: सी मेरा समझकर पर्सनल अपने वृत्त एक रुपए की चीज यूज की कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी फिल किया कन्याओं माताओं को मेरा पन नहीं समय श्वास अपने वृत्त नहीं उसे भी बेहद किए फेरा की रहे इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया सदा साधारण लाइफ में रहे कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में लगाई वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे चेंज किया बच्चों के लिए मकान बनाए लेकिन स्वयं यूज किया कहने से भी सुनते हुए उपराम रहे सदा बच्चों को सने देखते हुए भी ये शब्द रहे सब बच्चों के लिए इसको कहा जाता है बेहद की वैराग वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही अंत में देखो बच्चे सामने है वैराग वृत्ति सामने होते हुए बच्चे और सभी बच्चे अन्य बच्चे
1: शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने सुना, जो बाप दादा ने संस्कार उसके साथ साथ कोई एक भिन्न भिन्न संस्कार से एक संस्कार के ऊपर अटेंशन के साथ साथ उसी समय ये भी रिजल्ट बाप दादा को दो। अगर मानो आप चाहते हो

0: संस्कार कार्य में आने में कमी पड़ती जाए। तो जैसे योग के बारे में चेक करते हो, वैसे संस्कार के लिए रोज आता नहीं है, कभी कभी आता है। जो पुरुषार्थी है उनका बाय चांस पेपर आता है, बाकी रोज नहीं आता। लेकिन चेकिंग रोज होगी तो ये भी अटेंशन टेंशन को खत्म करता जाए। अटेंशन देने वाला ये मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, बाबा का भी वरदान है। इसके पीछे लग जाएंगे ना, रोज चेकिंग करेंगे ना रिजल्ट, तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। और जो बाप दादा चाहता है संस्कार के सब्जेक्ट में नंबर वन जाओ, जो संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आजकल के लोग एक तरफ बड़ी

बंक लगाओ।

0: gobernador Mataniban nirantar syaktyo ka anbao karao mansa dwara vibration dwara vacha dwara
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

कैसे करूं, क्या करूं, नहीं।

Jai.

Rettende Stimme.

सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो।

Neštěp.

जन्म

अच्छे बनाते हो। बाप दादा जब रोरियां सुनते हैं, रोरियां बहुत हिम्मत की करते हो। Yeah.

sacar rofa melão.

So.

Ramzor Sankalapa. Emerge nahi karo. Smriti rakho. Shut up.

इस अंधकार से Yeah.

see.

0: Σάρακο.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सत्युग में या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकते।

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ऐसे हो

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है, पता है कौन सी आश है? वो जान तो गए हो, जान गए हो ना टीचर्स, जान गए हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो, बाप दादा पुरुषार्थ देख करके खुश कराते हैं, लेकिन एक आश शरत में अभी दीवार गति चाहिए, और शरत है लेकिन अभी दीवार गति चाहिए। साथ दे

0: 싸웠습니다. 아비도 아트마오기 기용 아비쌈네 기억해. 먹디 따따기 데렉트 버치오. 아득까리 버치오. 또 마스터 먹디 따따도 오나. 리겐. 기호. दृढ़ संकल्प करेंगे के कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो। एक तो के समान संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा, सभी बच्चों को आज की

Jesse.

Siete.

Самипка, Садка, Самантака, Анупокарати. Санэй.

लवली

سب

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप समान बने। लक्ष्य तो सबका है, लेकिन बीच बीच

chaotic, अपने को लक्ष्य रख करके निर्विघ्न मन सा चाहे वाचा चाहे समन संपर्क में

Oh no.

Jalapeno.

0: चाय सेवा केंद्र चाय स्वयं कहाँ भी रहते हैं स्वयं को निर्विघ्न
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बच्चों को देख तो खुश है, लेकिन आगे के लिए जो भी संबंध संपर्क में आए उन आत्माओं की विशेष
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर तीन सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कल्पना अर्थात अपने संपर्क द्वारा संबंध द्वारा चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में तीन सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती है कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए। तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो, कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कल्पना अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ। एक ही समय तीन सेवा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सब ठीक आराम से रहे हुए हो, मन भी आराम में, धन भी आराम में, दोनों ही आराम है ना है? आप मुस्कुराओ, सीरियस नहीं रहो।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: देखो फायदा तो किया है, अच्छा है, मुबारक हो, लेकिन क्या है, फायदे का फायदा नहीं उठाते हो, फायदा बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फायदा उठाने के लिए रोज एक तो रियलाइजेशन, दूसरा रिवाइज करो, फायदे को रोज रिवाइज करो। क्या वायदा किया? अमृत वेले मिलने के बाद फायदा और फायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तो बाप दादा खुश है, हाथ उठाने में होशियार सभी है।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

याद करने वाले बच्चे। वाह, बाप के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाबा। सभी के मन में

Jimmy.

呼吸机见了，जो दिल का आवाज बाप के पास समझ।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने ये भी देखा कि जो नए नए बच्चे आती है उनमें
4: जो निमित्त है

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा सुनो, पापा और बच्चों की बातें क्या होती है? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं, रोब क्यों? फिर क्या कहती है, अगर आप भी होते ना

0: ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे। बाप को फिर भी रैप दल पढ़ना ही पड़ता है। कहते अच्छा अभी माफ कर रही है लेकिन आगे नहीं करना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: देखो बाप दादा, मैं चैरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मैं चैरिटी कह रहा। दूसरी बात क्या देखी, क्यों का कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। दूसरा कारण ये देखा कि अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में देखा, कोई बहुत रॉयल रूप का भी अलबेला बनते, एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है। क्योंकि साकार में तो हर एक के हर अरब को कोई देख नहीं सकते। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते, जो गया हुआ है कि परमात्मा की हजार आंखें लाखों आंखें है, लाखों कान है, वो अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा साथ साथ देख सकती है, कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से है, साधारण नहीं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है, शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है। देख लिया है क्या होता है, कुछ नहीं होता, अभी तो चल लो फिर देखा जाएगा। ये अलबेलेपन के संकल्प बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं। देखना आप लोग कहते हो ना, थोड़ी लाजपत रख दो, तो बाप दादा भी लाजपत रखते। लेकिन ये अलबेलापन पुरुषार्थ को दीवार नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या दो बातें देखी, परिवर्तन में अगर ये अलबेलापन है किसी भी रूप से है, हर एक के अलग अलग रूप, लेकिन अभी कहते देख लेना क्या होता है। गाना आज क्यों सुना रही है? क्यों चाहो नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है और आपको बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिए क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्पररी हो जाएगा, फिर कोई बात आएंगे ना कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है। इसलिए बनना ही पड़ेगा, मंजूर है ना?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: चारों ओर के परमात्म प्रेमी बच्चों को जो सदा पाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी है और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवादारी है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं और यहाँ शांतिवन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो, ये वरदान दे रहे। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे वो चेहरा देख के खुश हो जाए, कैसा भी हो आपका चेहरा खुश नुमा देख के खुद भी खुश हो जाए। ये वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सन्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान, कभी चेहरा मुड़ जाया हुआ, अगर आप मुड़ जाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा। आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहना, ऐसे सभी तीवर पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

つける。

0: कुछ ना कुछ होना ही है। इसलिए बाप की शुभाशय है कि हर एक बच्चा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

三次。

Sunscreen.

Sorry.

ます。

Snake Pop 2 AP.

Szarvas sektion ki pavar.

necesito un avalón coqueteo. Agar por Mad Mafia.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: så meget nej. Jeg sætter flere. Når man du var nevæs i åkken. Et specielt.
1: मधुबन वाला है, मधुबन वाला है। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज क्या संकल्प किया? बनना ही है ब्रह्मा बाप समान, बनना ही बनना है, नहीं बनना ही है। कोई भी बातें हैं, बात के बजाय बाप को आगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज का दिन प्यार का दिन है, तो प्यार में तो सबसे जो जाते विश्व पर

0: Pisuako banan ni Valio. Papta na to chota sa kam dili. Sangkalap karte ho. Haath uthao. Sangkalap karne wale. कुछ करती है मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो अभी दूसरे वाली आए तो कुछ खबरी सुन अपने नजदीक वाले साथियों को छोटा सा काम देती है सभी को नहीं कहती
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो यहाँ है खुशियों का संगम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सदा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन, ऑर्डर करो स्वीट साइलेंस, तो अनुभव करो ऑर्डर करने से अधिकारी बनने से ऑर्डर में रहते हैं। अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पुरुषोत्तम संगम योगी

Peace.

in it.

0: se sarete me, seganme, este todos de इसका अनुभव करते रहो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पवित्रता का वाइब्रेशन

सुख शांति संतोष

0: प्यार की संतुष्टता की खुशी के अचले देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि देनी, एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो और दूसरा चलन द्वारा पाप को प्रत्यक्ष करो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर कोई व्यर्थ वाह विकारी सोपत लगाओ का सोपत आता है तो अवश्य work।

0: मान हो तो फरमान के बदले अरमान मिलता है। सुबह को उठ करके दिल में अरमान होता है ना, मेरी पवित्रता स्वपन में कदम हो, ये कितना अरमान है। जैसे आया वाया वाह की बातें करते करते सो जाओ, क्योंकि समाचार तो बहुत होते हैं और दिलचस्प समाचार तो व्यर्थ होते हैं। तो कहीं कहते हैं और तो टाइम साथ में एक कमरे में जाते हैं तो लेन देन करते हैं, लेकिन काफी भी व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सुना नहीं। जरूरी बात है तो बाहर सुनाओ, ये तो को सोते सोते नहीं सुनो। और बातें करते करते कहीं तो 12:30 भी बजा देते, मस्त होते हैं बातों में, उनको टाइम का पता नहीं। ऐसे नहीं समझना, हमको तो कोई दिखता ही नहीं है, बाप दादा देखते हैं। क्योंकि निद्रा निद्रा भी बहुत शांति देती है और भी बहुत सुख देती है, इसीलिए मिक्स हो जाता है। अगर पूछेंगे ना कहेंगे नहीं, मैं बहुत शांति का अनुभव कर रही हूं। देखो नींद को भी आराम कहा जाता है। अगर कोई बीमार भी होता तो डॉक्टर लोग क्या कहते, आराम करो आराम क्या करो, नींद करो टाइम पर। तो निद्रा भी आराम देने वाली है। inte ser frisk ut denna. Och att det är jag med barn frisk.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कम से कम हर एक अपरत वेला तो मनाते हो, जो अपरत वेला रोज सर

So

0: सभी खुश है कि बीच में माया भी चांस लेती है। खुशी नहीं कमाना, माया आवे भी तो फौरन बाप को सुना के चेंज हो जाए। अगर बाप को नहीं पहुंच सको तो अपने निमित्त परों को जरूर सुनाओ। एक दिन से बनाना नहीं तो आदर पड़ जाए। ये अमृत वेले का अमृत पीना आवश्यक है। तो अवश्य इस समय को सफल कर ले।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का चमेला ज्यादा हो गया। मेरी एरिया विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये भी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: Zingaro. कभी मन तो मालिक नहीं बन जाता, क्योंकि इस समय बाप दादा ने हर एक को
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: वारिस की भाषा तो समझते हैं, समझते हैं ना, जो धन से मन से सहयोग से सबसे नंबर वन हो और हर कार्य में हर समय एवरेज हो, इसको कहा जाता है वारस। जिस समय बुलावा आवे उस समय हाजिर हो जाए, इसको कहा जाता है वारस क्वालिटी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति नहीं होती है। उसका कारण वरदान सबको एक है कि दूसरा दूसरा एक ही है ना। 60 साल वालों को भी एक, तो 1 मास वाले को भी एक। खजाने सभी को एक सबको एक जैसे, जिज्ञासा मर्यादाएं सबको एक जैसी, दूसरी दूसरी तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं कि विदेश की मर्यादाएं और है इंडिया की और है, ऐसे तो नहीं है। थोड़ा थोड़ा फर्क है, नहीं है। तो जब सब एक है फिर किसको सफलता मिलती है, किसको कम मिलती है? किसको ज्यादा देता हो, किसको कम, ऐसे है नहीं है, फिर क्यों होता है? सफलता को देगा, कभी कभी ईर्ष्या भी आ जाती है। वो ईर्ष्या जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करती है लेकिन दिल से नहीं, और फल मिलता है दिल से सेवा करने का, लेकिन कई बार बच्चे दिमाग चूज़

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Chador. Fellow. जवाब की प्रकृति सूर्य की शक्ति सूर्य की किरणें say.

फैला सकते हैं।

स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलो, सकाश फैलो, जैसे इस

c'est affreux.

0: Chop Joe. Jesse Joe. Chop Duck Joe. Top Duck. Monaco. Icagar. Corsac.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी अनुभव होता है वो छोड़ नहीं सकता।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार आत्माओं के प्रेत रैम दिल बनो। आजकल
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए, क्या देखने गए कि बाप दादा ने स्वमानों की बहुत बड़ी माला दी। अगर एक एक स्वमान में स्थित होके उस स्थिति में बैठो चलो तो स्वमान कहती जाओ और माला घुमाते जाओ तो बहुत मजा आएगा। स्वमान की लिस्ट रखी है लेकिन एक एक स्वमान कितना बड़ा है और किसने दिया है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक स्वमानों की लिस्ट दी, उसको यूज करो क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो इस स्वमान को आपके कम कर सके और किसी को भी इतने स्वमानों की माला नहीं मिली। तो बाप दादा ने देखा सत्ययुग में तो राजभाग मिलेगा लेकिन ये स्वमानों की माला संगम युग की देन। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चों के स्वमान के स्थिति से देखते हैं। वाह बच्चा वाह, तो स्वमान के अथॉरिटी में रहो। कभी कौन सा स्वमान सामने रखो, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो और चेक करो तो आज अमृत वेले जो विशेष स्वमान उदी में रखा उस स्वमान खजाना है ना, इसको यूज किया क्योंकि खजाना भरने का साधन है। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता है। तो आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन बच्चा है, किसके पास स्वमान की स्मृति की माला बड़ी थी, किसके पास छोटी। जहां स्वमान होगा वहां देवान खत्म हो जाता। तो आज बाप दादा ने चक्कर लगाया और देखा जैसे स्वमान का खजाना है ऐसे एक एक शक्ति एक एक गुण इस्तेमाल करो, उसको कार्य में लगाओ तो ये जो प्रॉब्लम होती है माया आ गई। माया आ नहीं जाती लेकिन माया ने बाप को सुना कि मेरे को आह्वान करते है तब जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती। कोई भी हल्का संकल्प करते है माना माया को आह्वान किया शक्तियों को छोड़ता है तो माया को प्राप्त हो रहा है। नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह, योग संगम युग का गायन है। एक एक धुन दिन उत्साह भरा हुआ है, अर्थात उत्सव।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

でした。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सारे क्लब में परमात्म बाप और परमात्म बच्चों का So

0: कोई और पाप बच्चों का देकर कोई भी बच्चा हो कहाँ भी है कैसा भी है लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाला।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: देखो, निश्चय का प्रत्यक्ष परवान है, रूहानी नशा
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज भाग्य बच्चों

tastes zesty.

Sangam Yogi. आप श्रेष्ठ आत्माओं का मस्तक से नहीं

着。

Zapuśćcie. Casar no sei.

0: स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो जैसे भी हो बाप तो देख खुश होता ही। बाप ने जो वायदा किया है कैसे भी लायक बना के ले जाना। बाबा माया आ गई, चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उठ जाओ तो माया देखती रहेगी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा, हर एक बच्चे के जेब में सहयोग के नोट होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी बात आवे ना, आप नहीं कर सकते हो, हिम्मत थोड़ी कम है, तो इस तरह पाप को जो अपना हिम्मत कम करने वाली आत काम है ना, वो बाबा से सुपुर्द कर दो, बाप को दे दो, बाप ये मैं नहीं कर सकती हूँ, आप ले लो, मैं ये संकल्प में भी नहीं लूँ, ऐसा करना पड़ेगा, बिल्कुल उसको संकल्प को आने नहीं दे, दे दो, वापस आवे तो दिल में नहीं रखना, फिर वापस कर देना। बाप दादा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा जो सोचे वो करके दिखा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देंगे

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जाती

0: 대신 그인 마슝 자노르고 아다트 달돔 브네카르미 아네기 페탕고 케바가비 इसका साधन है। सुनाया एक तो
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे। माताओं को सहज चाहिए ना, बाप दादा यही सब माताओं को बच्चों को कहते हैं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति

0: याद रहता है कि आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

счет будет. Свекарный карне. Sorry.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जगत

sais

описами. Io che so.

किसी समय पर शांति के शक्ति द्वारा टचिंग पावर बहुत आवश्यक होगी। ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ नहीं कर सके। सिर्फ चेक।

Es ist Sommer.

shit. It's God's sudden.

चाहिए। अभी रियल साल बढ़ते जाएंगे, और

serapi akar mandame putih.